भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम रणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन संपूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

0: फाइटर रूपक मास्के विस्तृत जानकारी का लागि भीमेश्वर ड्राइविंग सेंटर फरीकोट 20 बजार दोलखा भीमेश्वर टेक्निकल इंस्टीट्यूट नजिकै संपर्क नंबर 9844304879 9844304879 र 9864110011 9864110011
1: हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

नया नेपाल को नया आवाज आवाज विहीन को आवाज जन आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज़।